मैं दुआ कैन सिगा रोज मर रही थी बिपनार हुए हाँ तीरुता इरफिस में हा।